बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

घूंघट की आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है और जब तक मौसम की जानकारी ना मिल जाए तब तक नॉनस्टॉप गपशप अधूरा रहता है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश, तेज गरज चमक के साथ भी बारिश की संभावना बताई और जताई गई है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बात करें अगर हम गुजरे कल की, तो गुजरे कल में अधिकतम तापमान 30.6 यानी कि सामान्य से 1.4 डिग्री कम और न्यूनतम तापमान 26.2 यानी कि सामान्य से 0.3 डिग्री कम रहा। उच्च आर्द्रता 99% और निम्न आर्द्रता 87% रही। बात करें बारिश की, तो बारिश 66 मिलीमीटर रही। कौन कौन सी हैं वो बातें जो बनाती हैं आज के दिन को खास, बिल्कुल उन बातों पर भी डाली जाएगी एक नजर। आज के दिन जन्मे व्यक्तित्व की भी होगी चर्चा, नुस्खे भी दिए जाएंगे और आपसे होगी बातचीत भी, बिल्कुल होगी। मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारा बातचीत है

आज की हमारी बातचीत की कड़ी मैं नहीं बल्कि आप जोड़ने वाले हैं। अगर आपको आज के दिन के लिए एक कोई टॉपिक डिसाइड करना हो किस विषय पर करेंगे आप और हम नॉनस्टॉप गपशप, तो आप किस विषय को चुनना चाहेंगे? यानी कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में चलने वाली हैं हमारी मन मर्जियां। हमारा हर कॉलर अपने दिल की बात कह सकता है, जुड़ सकता है दिल से दिल तक। टेलीफोन लाइंस खुल जाएंगी आपके लिए 10:30 पर। फिलहाल 10:17 और 35 सेकंड आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: आज के दिन। डालें अगर हम नजर आज के दिन पर, कौन कौन सी हैं वो घटनाएं जो घटित हुई इतिहास के पन्नों पर आज के दिन, तो शुरुआत की जाएगी एक दुखद घटना से। वर्ष 1945, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम आज ही के दिन गिराया। घटना दुखद लेकिन मानवता की सीख। आगे बढ़े तो वर्ष 1986 मुंबई के जसलोक अस्पताल में भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा का जन्म हुआ। मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा की दुनिया में ये एक बड़ी उपलब्धि थी। थोड़ा पीछे चले जाएं, वर्ष 1862, तो आज ही के दिन यानी कि 6 अगस्त के दिन हुई थी मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना। ये तो हुई कुछ बातें, थोड़ी सी बातें आज के दिन की। आज के दिन जन्मे वो व्यक्ति जिन्हें अब हम व्यक्तित्व के रूप में स्थापित देखते हैं, उनकी भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले एक गीत, यानी कि आज के दिन में लेंगे हम एक छोटा सा, बहुत छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।
1: आज के दिन

0: गायक उदित नारायण के पुत्र, जिन्होंने बतौर बाल कलाकार रंगीला और परदेश जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, टीवी होस्ट के तौर पर भी खुद को स्थापित कर चुके हैं उदित नारायण। और आज ही के दिन वर्ष 1971 में जन्म हुआ था अभिषेक कपूर का। हिंदी फिल्मों के जाने माने निर्देशक, पूर्व अभिनेता, रॉक ऑन काइपोचे जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं अभिषेक कपूर। अमेरिकी फिल्म निर्देशक भारतीय मूल के एम नाइट श्यामलन, 1970 में आज ही के दिन हुआ उनका भी जन्म। और भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह का जन्म हुआ वर्ष 1959 में। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अविनाश दीक्षित का जन्म हुआ वर्ष 1944 में। और ए जी कृपाल सिंह, भारतीय क्रिकेटर, आपका जन्म हुआ वर्ष 1933 में। गुजरात और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल के एम चांडी, आप प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, आपका जन्म हुआ वर्ष 1921 में। और भारत के पांचवें लोकसभा अध्यक्ष गुरदयाल सिंह ढिल्लो का जन्म हुआ वर्ष 1915 में, आज ही के दिन यानी कि 5 अगस्त को।
1: आज के दिन
0: जुड़ना चाहते हैं अगर आप भी दिल से दिल तक, तो 2213134122 1313 1341। जी हाँ, यही है वो रास्ता, यही है वो नंबर जिससे आप जुड़ सकते हैं नॉनस्टॉप गपशप से। और आज हम बातें करेंगे कि अगर आपको मौका दिया जाए मन मर्जियां करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो आप कौन सी बात करना चाहेंगे नॉनस्टॉप गपशप में, आप किस मुद्दे को लेकर, किस विषय को लेकर जुड़ना चाहेंगे दिल से दिल तक। एक 107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का एफएम रेनबो चैनल, 10:34 और 27 सेकेंड, पूजा है आपके साथ, कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप बना रहेगा हमारा साथ पूरे 11 बजे तक।

जब बात होती है मनमर्जियां करने की, तो कई बार ये हम सोच भी नहीं पाते कि हमें ऐसा मौका कभी मिल जाएगा जहां हमें अपने मन की करने की आज़ादी होगी। और ऐसे में हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या करें। कुछ ऐसी ही कश्मकश के साथ हमसे जुड़े थे श्याम कुमार, चंचल, जीतू रिश्ता से जुड़े थे। और जीतू ने कहा कि अगर मुझे बात करना हो तो मैं किशोर कुमार के विषय में बात करना चाहूंगा। हालिया गुजरा है उनका जन्मदिन, लेकिन क्या बात कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं, किस गीत की चर्चा करना चाहते हैं? अचानक जीतू कुछ ना बोल सके। पायल से जुड़े हम, पायल ने बारिश की बात की, लेकिन बारिश के विषय में क्या स्पेसिफिक वो कहना चाहती हैं कहने से पहले

0: बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने से पहले ही कॉल हो गई डिस्कनेक्ट। ऐसा ही होता है हमारी जिंदगी में, जब अचानक कुछ ऐसा हो जाए जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, जिसकी हमें आस नहीं होती, तो हम समझ नहीं पाते, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसे अडॉप्ट नहीं कर पाते। और यही बैलेंसिंग हमारी जिंदगी में अगर हम सीख लें तो हम हर दुख दर्द, हर खुशी में समान भाव से रह पाएंगे। तो चलिए दे देती हूँ आपको एक चुटकी,
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: और ये जो नुस्खा है, ये नुस्खा है रिश्तों को बचाने का, रिश्तों को बनाने का, अपनों से जुड़ने का, अपने आप से जुड़ने का। क्योंकि ये जो हमारे अपने होते हैं ना, वही हम होते हैं। कार्यक्रम है नॉनस्टॉप गपशप, और जिस तरह से इस कार्यक्रम में कंटिन्यूअसली आपकी कॉल्स आती हैं, समझ पाते हैं हम कि कितनी शिद्दत से आप जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से। बस उसी शिद्दत से अपने घर के हर रिश्ते को थोड़ा सा समय दीजिए। कब दें, कैसे दें, कहां दें, बस यही तो डिसाइड कर लेना है। अगर घर में बच्चे हैं तो किसी भी एक समय बिना उन्हें कुछ कहे, बिना अपने विचारों को, अपने मत को उन पर थोपे, सिर्फ उनकी बातें ध्यान से, प्यार से, पूरे अटेंशन के साथ सुन लें। किस समय सुने? रात में सोने से पहले आप सुन सकते हैं, रिश्ता मजबूत होता है। घर में अगर बुजुर्ग हैं तो सुबह की चाय उनके साथ पी जा सकती है, दोपहर या शाम का खाना उनके साथ खाया जा सकता है, या कुछ नहीं, बस ऐसे ही रात में बिस्तर तक पहुंचने से पहले एक बार उनके बगल में प्यार से बैठ के उनके सिर पर हाथ फेरते हुए, उनके पैरों पर हाथ फेरते हुए पूछ लिया जाए, कैसे हो? उन्हें बता दिया जाए, हम कैसे हैं, मैं कैसा हूं। ये जो थोड़ी सी गपशप अपने अपनों से रिश्ते को बेहद मजबूत बना देती है। आजमाया नुस्खा है, आप भी आजमा कर देखें।
1: एक चुटकी नुस्खे।

और अगर पहली कॉल में आप अपनी बात पूरी न कर सके हो तो आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। पायल एक बार फिर जुड़ गईं दिल से दिल तक और कहा उन्होंने कि बारिश के मौसम में कविताओं की बात, गीतों की बात की जानी चाहिए, और उन्होंने मुझे उनकी खुद की लिखी एक बेहद बेहतरीन सी कविता जहां उनकी हवाएं पगली हुई जा रही हैं सुनाई। अगली आवाज आशा भोसले और कुमार शानू की। समय बहुत ही कम बचा है हमारे पास, 10 मिनट से कम समय है, तो ऐसे में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। 2213-1341 हमारा नंबर है।

नॉनस्टॉप गपशप अपने आखिरी मोड़, अपने आखिरी छोर तक पहुंच चुका है। एक बार फिर जुड़े थे श्याम कुमार चंचल, और श्याम कुमार चंचल जी ने आग्रह किया है, गुजारिश की है सभी श्रोताओं से कि सब मिलकर प्रार्थना करें हर दिल अजीज गायिका अलका याग्निक के लिए। श्याम कुमार जी की हर प्रार्थना में शामिल होता है अलका याग्निक का स्वास्थ्य लाभ। तो इसी शुभेच्छा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि हमारी गायिका जल्दी स्वस्थ हो, कार्यक्रम का आखिरी गीत अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में आप सभी की नजर। इसी गीत के साथ दीजिए इजाजत अपनी दोस्त, अपनी होस्ट पूजा को आज के कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप से। इस वादे के साथ स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे और जुड़े रहेंगे दिल से दिल तक।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल आपके अपने डेली स्ट्रेस बस्टर यानी कि मस्त मौला और चटपटे शो में। जी हाँ, यह है कार्यक्रम तीन का तड़का, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, दिन के वक्त जब दिमाग थोड़ा थकने लगता है, काम का प्रेशर बढ़ने लगता है और दिल कहता है कि अब बस थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तब एंट्री होती है आपके इस आरजे की यानी कि आपकी अपनी होस्ट है दोस्त ज्योति की, ताकि आपके मूड में मस्त वाला तड़का लगा सकूं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम का, जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में एक प्यारे से एक एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे बातें करने के लिए वक्त भी है हमारे पास, जी हाँ, लेकिन बातें तो होती रहेंगी, क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत करूँ इस एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ।

चलिए दोस्तों, इस बदतमीज दिल को मनाते हुए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कार्यक्रम 3 का तड़का, जी हाँ, आपके मूड को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए आते हैं, क्योंकि दिन का वक्त हो जाते हैं थोड़े से डर, जी हाँ, क्योंकि काम की परेशानी होती है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी थकावट भी होती है। तो दोस्तों अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर ऑफिस की चेयर पर बैठे हैं या घर पर आराम कर रहे हैं, तो अपने ईयरफोन लगाइए, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और रेडी हो जाइए दिन के सबसे मज़ेदार 10 मिनट के लिए। जी हाँ, क्योंकि इस 10 मिनट में, यानी कि साढ़े घंटे में, मैं आपको बिल्कुल ही अच्छी, यानी कि सुपरहिट बॉलीवुड ट्रैक और साथ ही साथ कुछ ना कुछ एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ

और ढेर सारी बातें यानी कि गपशप भी होगी आप सभी के साथ। तो चलिए दोस्तों, बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है दोस्तों 3:09:30 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
1: तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण और सशक्तिकरण से जुड़ी योजना के बारे में विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना। साथियों, किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग आत्मनिर्भर बने, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को जब आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं तब देश की आर्थिक नींव और मजबूत होती है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल सन 2016 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य SC/ST वर्ग और महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण की सुविधा दी जाती है। ग्रीनफील्ड परियोजना का अर्थ है ऐसा नया उद्यम जो पहली बार शुरू किया जा रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेवाओं या फिर व्यापार से जुड़ा हो। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाता है। हर बैंक शाखा को कम से कम एक महिला उद्यमी और एक SC/ST उद्यमी को ऋण देना अनिवार्य किया गया है। इस ऋण में परियोजना लागत का अधिकतम 75% तक वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि लाभार्थी को स्वयं लगानी होती है, जिसे मार्जिन मनी कहा जाता है। ऋण की अदायगी की अवधि अधिकतम 7 वर्ष तक होती है और इस कार्यशील पूंजी की भी सुविधा मिलती है। स्टैंड अप इंडिया योजना की एक खास बात यह है कि इसमें केवल ऋण ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है। इसके लिए सरकार ने स्टैंड अप इंडिया पोर्टल और टोल फ्री हेल्पलाइन की व्यवस्था की है, ताकि उद्यमी सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस योजना से लाखों महिलाएं और युवा उद्यमी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और समाज में आर्थिक समानता को बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, स्टैंड अप इंडिया योजना केवल एक योजना नहीं बल्कि यह एक आंदोलन है जो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ खड़े होने की प्रेरणा देता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप या आपके आसपास कोई महिला SC/ST वर्ग से संबंधित व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में अवश्य जानकारी दें।
0: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।

तो दोस्तों, समय जल्दी कितना बीत जाता है ना, पता भी नहीं चलता कि बातों ही बातों में, जी हाँ, ये जो वक्त है ये बिल्कुल जो है अपने समापन की ओर बढ़ चला है। तो दोस्तों, भले ही वक्त बढ़ चला हो, लेकिन ज़िंदगी में जो ये काम का प्रेशर, भाग दौड़ और तनाव तो हर रोज़ रहता है, लेकिन इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आपकी इस बिजी शेड्यूल से आपके लिए बिल्कुल थोड़े से वो पल निकाल सके जिसमें आपको सुकून मिले और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दे सके। अगर दोस्तों आज का ये शो सुनते हुए आपके चेहरे पर एक पल के लिए भी हल्की सी मुस्कान आई है, तो समझ लीजिए कि हमारा आज का तड़का एकदम हिट रहा। तो दोस्तों, जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे छोटी छोटी खुशियों के साथ खुल कर जिए और बेवजह की टेंशन को साइड में रखें और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहें। कि दोस्तों, क्योंकि ये जो संगीतमय सफ़र है ना, ये संगीतमय सफ़र ही हर पल को यादगार बना देता है और हर एहसास को सुरों में पिरो देता है। और आपका साथ और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी के हर पल के गीतों की मिठास के साथ जीते रहिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले अंक में फिर मिलेंगे, जी हाँ, जिसमें नए गीत हो, बातें हो और साथ ही साथ ढेर सारी मस्ती हो। लेकिन मैं आप सभी से ठीक मिलने आऊँगी 5:15 में, जी हाँ, कार्यक्रम चैन क्लासिक्स में, बिल्कुल 100.1 FM गोल्ड पर। और जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिर परिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओ, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहां। जी हाँ श्रोताओं, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे दो मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? और क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है, फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से

0: श्रोताओ, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए। उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओ, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को। आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT के पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम, असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए।

0: बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
0: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
2: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
3: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
4: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
3: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
5: बिल्कुल सही कहा आपने।
4: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
5: जी जी चलो चलो देखते हैं।
4: चलो चलो चलो चलो, आओ, आओ। चलो चलो जल्दी चलो।
6: अहोम के महाराज की जय हो।
7: जय हो जय हो।
6: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बिशु के साथ।
8: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
4: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
5: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
6: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
4: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
6: अच्छा।
4: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
6: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
4: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
6: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
4: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
6: ओ।
4: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है।

0: इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं, और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
1: अरे वाह, सर मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
0: बिल्कुल ठीक कोमल, ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
1: ओह,
0: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
1: अच्छा।
0: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
1: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
2: जी।
1: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
0: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
1: जी।
0: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
1: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई?

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
1: खुशी, खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।

बाग है, कितने सुंदर फूल हैं और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है,
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया है इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई? अरे नमस्ते दीदी।
1: अरे भैया।
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे,
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो। शाबाश
2: बेटा, मामा जी आए हैं। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी? एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा, ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है। आई पसंद? और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है। देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो, ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी, आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसे नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी, पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी, हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा, देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो, इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा, ओफो चली गई बिना खिलौने लिए।
3: आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
3: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी, देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
3: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
4: नहीं ताशु, आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
3: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
4: नहीं ताशु, मेरा खेलने का मन नहीं है।
3: खेल लो प्लीज।
4: प्लीज ताशु, मुझे नहीं खेलना है।
3: प्लीज।
4: नहीं।
3: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
4: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
6: वाह चिड़िया, कितनी अच्छी है। तितलियाँ भी, ये भी बहुत अच्छी हैं। फूल, फूल फिर से, वाह। तोते, तितलियाँ रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी।
1: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
6: मैं तो बाहर जा रही हूँ।
1: अरे
6: वहाँ देखो चिड़िया, तोते, अरे सुंदर है।
1: अरे सुन तो।
6: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
1: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
2: एक बार देखे तुमने?
1: हाँ।
2: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
1: सही कहते हो आप।
2: हे ईश्वर, हे भगवान, तूने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
5: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहां चली गई थी। जहां वो पहले रहते थे वहां पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी। प्रकृति की खूबसूरती जाने कहां चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
7: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: नजारा फिल्मों का। गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति लेकर छायालोक के सेगमेंट कार्यक्रम नजारा फिल्मों का, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, आज की इस हसीन शाम में मैं जो लेकर आई हूँ, जो गीत यानी कि यादों का कारवा, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही है नजारा फिल्मों का। तो जब सिनेमा का मतलब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पर्दे पर पूरी दुनिया की सैर करना होता था, जैसे कि स्विट्जरलैंड के हरे भरे मैदान, पीली सरसों के खेत और बर्फ से ढकी चोटियां। तो दोस्तों, आज के सफर के लिए हो जाइए तैयार। तो उठाइए अपनी कल्पना की उड़ान, शुरू करते हैं नजारा फिल्मों का इस गीत से, यानी कि लता मंगेशकर और बाबला की इस मधुर आवाज़ से।

के बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच रंग बिरंगे परिधानों से सजे दो प्रेमी और चारों ओर प्रकृति की अद्भुत छटा। यही खूबसूरत नजारा इस फिल्म को, इस गीत को आंखों और दिल दोनों के बेहद करीब ले आता है। फिल्म चांदनी का ये गीत अपने भव्य फिल्मांकन और मधुर धुन के लिए आज भी याद किया जाता है। स्विट्जरलैंड की मनमोहक वादियों में फिल्माया गया ये गीत श्रीदेवी और ऋषि कपूर की शानदार जोड़ी पर चित्रित है और साथ ही शिव हरी की मधुर संगीत और आनंद बख्शी के खूबसूरत बोल और लता मंगेशकर की सुरीली आवाजों ने इस गीत को सदाबहार बना दिया। दोस्तों, जब हम फिल्मों में खूबसूरत नजारों की बात करते हैं तो अक्सर ध्यान हरे भरे पहाड़ों या नीले समंदर पर जाता है, लेकिन साल 2000 में, जी हाँ, साल 2000 में जब फिल्म आई पुकार, जिसमें संगीतकार A.R. रहमान ने हमें ऐसा नजारा दिखाया जिसने सबका दिल जीत लिया। फिल्म पुकार का ये गीत की सुनता है मेरा खुदा। जी हाँ, इस गीत में मैक्सिको के विशाल रेगिस्तान और वहाँ के हजारों साल पुराने ऐतिहासिक की चीज़ों के बीच फिल्माया गया ये गीत। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और नम्रता शिरोडकर पर फिल्माए गए इस गीत में जब उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज गूंजती है तो लगता है जैसे हवाएं भी गुनगुना रही है। तो चलिए कानों में घुलते हैं रहमान साहब की ये संगीत और आंखों में सजाते हैं ये अद्भुत नजारे। तो चलिए दोस्तों इस गीत की ओर और इस गीत को, जी हाँ, इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत से सजाया है A.R. रहमान ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: नजारा फिल्मों का,

दोस्तों, जब पर्दे पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी हो और साथ ही प्रीतम का संगीत हो, अरिजीत सिंह की आवाज हो और बैकग्राउंड में आइसलैंड की बर्फीली वादियां हो, तो नजारा कैसा होगा। बिल्कुल सही समझा आपने, साल 2015 में फिल्म दिलवाले के गाने के लिए। जी हाँ, वो जो गीत जिसने हमें कैसा नज़ारा दिखाया जो पहले हिंदी सिनेमा में कभी नहीं देखा गया था। आइसलैंड के समुद्री तट, जमे हुए झरने और उड़ते हुए पक्षियों के बीच फिल्माया गया यह गीत आंखों को सुकून और दिल को ठंडक देता है। तो चलिए दोस्तों, आज की शाम को थोड़ा और रंगीन बनाते हैं इस हसीन नज़ारे के साथ। तो पेश है आप सभी के लिए फिल्म दिलवाले से ये गीत।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक।
1: नजारा फिल्मों का,

ही पाठक के गाए हुए इस गीत को सुनकर कहीं ना कहीं आप इस द्वार में पहुंच गए होंगे और उस खूबसूरत सुहावनी जगह पर अपने आप को देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं संगीत की धुन में आप थिरकने पर तो मजबूर हुए ही होंगे। तो दोस्तों, जब नज़ारों की बात होती है ना, तो सिर्फ विशाल पहाड़ ही नहीं बल्कि इंग्लैंड की ऐतिहासिक और शाही बगीचे भी एक अलग ही सुकून देते हैं। यानी कि साल 2007 में फिल्म झूम बराबर झूम का एक ऐसा ही गीत जिसमें प्यार की धीमी और मीठी सरसराहट है। जी हाँ, इसमें साथ ही साथ बताया गया है खूबसूरत बगीचों पर ये दृश्य फिल्माया गया और साथ ही गुलाब की पंखुड़ियाँ, पुरानी इमारतों और साथ ही राहत फतेह अली खान और साथ में महालक्ष्मी अय्यर की रूहानी आवाज़ से सजा है। तो दोस्तों, आइए इस गीत के द्वारा हम इस हसीन नज़ारे में खो जाते हैं।

तो दोस्तों, फिल्मों के नज़ारे यानी कि नज़ारा, फिल्मों का ये सुहाना सफ़र यही समाप्त होता है। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा एक विशेष प्रायोजित कार्यक्रम और ठीक रात 8:02 में आपके लिए हाजिर हो जाएंगी प्रीति मुरार का, जी हाँ, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम, जी हाँ, शैलोक के सेगमेंट नज़ारा फिल्मों का। फिलहाल अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाज़त। तो दोस्तों, मैं तो जा रही हूँ, आप कहीं मत जाइए, यूँ ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

0: We bring you a talk on senior citizens, care, system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
1: Senior citizens care ka, chahe wo gaon mein ho, chahe wo shahron mein ho, uske prati jagrukta karni ho ya पॉलिसी मेकर्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटी या वाइडर सोसाइटी को इसमें इंटीग्रेट करना हो, एक ब्रॉड पिक्चर कि भारत धीरे से ही सही पर एजिंग सुनामी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बेहतर मेडिकल सुविधाएं और जो लॉन्जिविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है। यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए एक ये बोन बनकर आ सकता है। हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है, उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं। 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय ये है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं। 58% से ज़्यादा महिलाएँ जो 60 साल के ऊपर हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके प्रति ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है। ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग होते हैं। वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना और क्योंकि शरीर

है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं, तो घर से ज्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियां भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं। कुछ साल पहले अखबारों ने ये भी पढ़ा था, जो बेगरी करते हैं काफी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएं, वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है। उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनसे चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाजों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओस इस चीज को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं। अब ये प्रश्न आता है, जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज करते कौन है, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं, सन्स और डॉटर्स, वही इसको, और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए। तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज के, तो उसके कुछ कारण हैं। आपने सभी ने ये शब्द जरूर सुना होगा, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं, और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुदबुद्ध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज के प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है, उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं, एक वो प्रकार का अब्यूज है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है, और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीजें जो स्टॉप कर देते हैं, वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाजें सुनाई देती हैं, उनके देखभालकर्ता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति उनका हाइजीन, उनकी डेली जरूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना।

0: फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है उस पर इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों चाहे परिवार के लोग हों देखभाल करता हों, तो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय पर अपनी वसीयत बनाएं, अपने नाम पर सेविंग्स रखें और चीज़ों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम, वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज, वेलफेयर, Awareness and Strengthening Access to Justice from the webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice.
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं? तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तीन लेवल्स आपके सामने जरूर बात करना चाहूंगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीनियर सिटीजन देमसेल्व्स स्वयं की जिम्मेदारी लेना, समय पे जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना, सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना, ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व है। दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना। जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियाँ उन्हें देना। और जो ग्रास रूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है। आने वाले समय में डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो। एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति। और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं, उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं। और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाती हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामय वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है। सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन। और इसमें एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं, उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, CCTV या जितने वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, मास अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं। और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं,

0: एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जेनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे, और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजंस वुमेन के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली में हमारी संस्था अनुग्रह, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली हाई कोर्ट के साथ मिलके भारत का एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं, स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है, जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडियाज फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज एन एज फ्रेंडली इंडिया एंड एज फ्रेंडली सोसाइटी, एंड स्पेशली आई वुड से यूथ has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this.
1: You had been listening to a talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, founder, secretary and chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ। जिंदगी सचमुच एक मिक्स्ड बैग है ना, इसमें कभी हंसी की खनक है तो कभी यादों की नमी, कभी उम्मीदों की धूप है तो कभी सपनों की बारिश। हर दिन एक नया रंग लेकर आता है और हर रंग अपने साथ एक नई कहानी। जिंदगी हर मोड़ पर एक नई तस्वीर देती है, कभी हंसी कभी आंसू मगर जीने की तदबीर देती है। जो मुस्कुरा कर सफर तय कर ले, जिंदगी उसी को अपनी सबसे खूबसूरत जागीर देती है। इन्हीं रंगों की शुरुआत करते हैं कैसे गीत से, जो जीवन को मुस्कुरा कर जीने की प्रेरणा देता है। और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर है 2213-1341। इस नंबर पर आप डायल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने मनपसंद गीत को सुन सकते हैं।

देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो, चलिए उनसे तो बात नहीं हो पा रही है। विमल मित्र आए थे और उन्होंने सुनना चाहा है याराना फिल्म से भोले ओ भोले, तो उनकी पसंद पर हम ये गीत तो ज़रूर सुनाएंगे। पर सुनाने से पहले एक बात बताऊं आपको कि सावन का महीना वैसे भी आते ही एक वातावरण में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होने लगती है ना। मंदिरों की घंटियाँ, हर हर महादेव का जय घोष, कांवड़ियों की आस्था और शिवालयों में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़, मानो पूरा वातावरण भगवान शिव की भक्ति में डूब जाता है।

सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम छाया लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ। और हमारे साथ अभी जुड़े थी सुप्रिया हावड़ा से, और उन्होंने सुनना चाहे फिल्म एक दूजे के लिए फिल्म से एक बेहद ही खूबसूरत सा गीत। और यह गीत सुनाने से पहले मैं बताऊं कि उम्र की हर दहलीज अपने साथ एक अलग एहसास लेकर आती है, लेकिन 16 बरस यह वो पड़ाव है जहाँ सपनों को पंख लगने लगते हैं, मुस्कान बिना वजह खिल उठती है और दिल छोटी छोटी बातों में भी धड़कने लगता है। यौवन की यही चंचलता, मासूमियत और जीवन का उल्लास ये इस अगले गीत में अब बड़ी खूबसूरती से झलकता है। सुनते हैं सुप्रिया की फरमाइश पर ये गीत।

0: चलिए देख लेते हैं कि अब कौन है हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते,
1: हम थैलापुरी से अशोक दत्त बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी बताइए, कैसे आप?
1: हमको वो गाना सुना दीजिए, सारा भी फिल्म से मुझे नौलोटा मांगा दे रहे सैया दीवानी।
0: ओके चलिए,
1: कुमार लता मंगेशकर।
0: ओके, तो इनकी फरमाइश पर तो हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन गीत सुनाने वाले हैं, पर वैसे भी प्यार में तोहफों की कीमत नहीं होती, उन्हें देने वाले का अपनापन मायने रखता है। कभी कभी दिल भी शरारत कर बैठता है और फरमाइशों की लंबी सूची सामने रख देता है, और बहुत महंगे, लेकिन इन फरमाइशों में भी नाराज़गी कम और नखरे ज़्यादा होते हैं, शिकायत कम और प्यार ज़्यादा। इन्हीं मीठे नखरों, मुस्कुराती अदाओं और चुलबुले अंदाज के साथ आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

0: वक्त तो चला है 8:29 और 52 सेकेंड, और अब देखते हैं कि हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: हाँ, मैं बरगाछिया गिरजापुकुर पर हावड़ा से प्रशांत धोक बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी प्रशांत जी, बताइए कैसा है मौसम?
1: का महीना चल रहा है, इसलिए मैं सावन वाले गीत सुनना चाहता हूँ।
0: ओके,
1: आया सावन झुमके से।
0: हाँ जी,
1: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ आया सावन झुमके, ये गाना सुनना चाहता हूँ।
0: ओके, तो चलिए,
1: प्रोग्राम बढ़िया हो रहा है, अच्छा लग रहा है।
0: धन्यवाद जी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते। तो इनकी पसंद का गीत सुनाने से पहले चलिए, हमारी तो जो आदत है, हम एक बात तो आपको जरूर बताएंगे कि सावन का महीना आते ही जैसे प्रकृति नए रंगों में सज जाती है। पेड़ों की हरियाली हो, रिमझिम फुहारे और मिट्टी की सौंधी खुशबू और ठंडी हवाएं, सब मिलकर मन को एक अनकहीं खुशी दे जाते हैं, है ना? कहते हैं कि कैलेंडर में तो 12 महीने होते हैं, लेकिन दिल का अपना एक महीना होता है, वो होता है सावन। क्योंकि इस मौसम में केवल धरती ही नहीं भीगती, यादें भी भीगती है, सपने भी भीगते हैं, और कई बार, जी हाँ, कई बार आंखें भी भीग जाती है।

वक्त चला है 8:37 और 46 सेकेंड। अब देखते हैं कि हमारे साथ कौन आ चुके हैं। हेलो हेलो, चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़े थे गणेश उपाध्याय जी और उन्होंने फ़ोन किया था अलीपुर से और उन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है मौसम, उन्होंने भी मौसम पर ही फरमाइश की है कि मौसम का भी अपना एक अलग मिजाज होता है ना, कभी धूप बनकर मुस्कुरा देता है तो कभी बादलों की ओट में छिपकर दिल की धड़कनों को और भी तेज़ कर देता है ना। जब दिल किसी की याद में डूबा हो और हर हवा का झोंका, हर बादल और हर फुहार जैसे उसी का पैगाम लेकर आती है, और ऐसे ही पैगाम लेकर आ रहे हैं मोहम्मद रफ़ी जी। फिल्म का नाम है लोफर।

0: बिल्कुल, आज तो मौसम बहुत ही बेईमान है। चलिए अब देखते हैं कि कौन आए हैं हमारे पास। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: प्रीति जी नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: मैं श्याम कुमार चंचल बोल रहा हूँ, सांकरायल
0: हाँ श्याम जी बताइए।
1: मानिकपुर से।
0: ओके बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: प्रीति जी
0: हाँ जी,
1: मैं बता रहा हूँ, इसके पहले मैं हमारे जितने भी एफएम के बंधु हैं, प्रेमी हैं, दीवाने हैं, मैं उन सभीओं से ये प्रार्थना करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि अलका जी के लिए सभी प्रार्थना करें, वो जल्दी स्वस्थ होके अपने अच्छे से तरह से गाने आ जाएं, और हमें उनकी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारी हैं हमारी वो, और जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं और गाने पर आ जाएं।
0: बिल्कुल, हम दुआ
1: सभी
0: करेंगे।
1: मेरे श्रोता हैं, सुनने वाले, उनसे मेरा अनुरोध है, मेरे जितने भी पुराने फ्रेंड हैं, कॉलर फ्रेंड हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके लिए प्रार्थना करें, जल्द अच्छी हो जाएं वो।
0: बिल्कुल, अब आप बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं सावन का महीना पवन करे शोर, ये गीत सुनना चाहता हूं।
0: बिल्कुल, तो चलिए आपकी फरमाइश पर हम सुनाते हैं आपको ये गीत।
2: सावन का महीना पवन करे शोर,
3: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम छाया लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ। वक्त हो चला है 8:52:55, जाने का भी वक्त हो चला है। तो जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि मोहब्बत की दुनिया में भी कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती है ना, जो किसी दौलत, शोहरत या फिर मंजिल से भी बड़ी लगती है। कभी कभी बस एक अपने का साथ मिल जाए तो अधूरी जिंदगी भी मुकम्मल सी महसूस होने लगती है। शायद इसी एहसास को मैं जो एक दो लाइन कहना चाह रही हूँ अभी, उसमें समेटा जा सकता है। मंजिलों की चाहत बाद में, पहले किसी अपने का साथ मिल जाए। मंजिलों की चाहत बाद में, पहले किसी अपने का साथ मिल जाए। फिर चाहे सफ़र कितना भी लंबा हो, हर रास्ता आसान नजर आए। इन्हीं गहरे जज्बातों के साथ आइए सुनते हैं फिल्म जहर का ये बहुत ही लोकप्रिय गीत अगर तुम मिल जाओ। और इस गीत को सुनते सुनते प्रीति को दीजिए आज्ञा, फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए, साथ रहिए, खुश रहिए।